0: sûr de mettre en péril la sécurité des usagers ou encore le bon fonctionnement de l'appareil. Donc en fait, on vient faire des remplacements.
1: बहुत ही सुलझे हुए कलाकार थे, बहुत सुरीली आवाजों में आ जाते अपनी आवाजों का, यानी कि जादू चलाया, बहुत ही सुरीली आपकी आवाजें थी, हमें इस बात पर बिल्कुल भी
2: from the mine is shop soon in the meantime.
3: I'm not a fan.